0: यानंतर ठीक 6 वाजता हिंदी समाचार दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील. आम्ही त्या सहक्षेपित करू.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे. श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे. इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे. इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की. श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की. वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देशभर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे. उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा. मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है. नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है. इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रूपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है. सरसों और खसखस का मूल्य 413 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है. दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900

0: करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्स OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR या ॲपसहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। सकाळचे 6:05 आणि 8 सेकंद झाली आहेत। ऐकूया भक्ती संगीताचा कार्यक्रम मंगल प्रभात। कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया यशवंत देव यांनी संगीतबद्ध केलेलं रवींद्र साठे यांच्या स्वरात दत्तस्तोत्र।

0: श्रोत्या, आताच आपण परिसर हा कार्यक्रम ऐकलात. सादर करते होते रोशन जाधव आणि आकाशवाणी मुंबई केंद्राची निर्मिती होती. आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबईची अस्मिता वाहिनी. यानंतर ठीक 6:55 संस्कृतमधून बातम्या दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील. आम्ही त्या सहक्षेपित करू.
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र संघलोकसेवायोगस्य शताब्दी समारोहे सहभागं करिष्यति. सः अस्मिन्नवसरे आयोजितं कार्यक्रममपि सम्बोधयिष्यति. अयं कार्यक्रमः विगतवर्षस्य अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनांकात् प्रारब्धानाम् आवर्षं यावत् प्रवर्तमानानां समारोहाणां समापनसूचकः भविष्यति. 26-1900 वर्षे संघलोकसेवायोगस्य स्थापनायाः शतवर्षपूर्त्यवसरे एतस्य समारोहस्य आयोजनं भवति. श्रीमोदी संघलोकसेवायोगस्य शताब्दी स्मारक नाणकम् अथ स्मारक प्रैष्य चिटिकाञ्च प्रख्यापयिष्यति, तथा 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन्स इन इंडिया इति नामना एकस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि करिष्यति. मंत्रिमंडलस्य आर्थिक कार्य समित्या ह्यः अग्रिम वित्तीय वर्षस्य रबी विपणन सत्रस्य सर्वेषां सूचितानां सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धयितुं अनुमोदनं प्रदत्तम्. केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मंत्रिमंडलस्य उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् उक्तवान् यत् कृषकेभ्यः तेषां कृष्युत्पादानां लाभकरं मूल्यं सुनिश्चेतुं निर्णयः अयम् गृहीतः.
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था. उस फैसले को इसमें लागू किया गया है. वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी.
1: कुसुम सस्यस्य समर्थन मूल्ये सर्वाधिकं 75,600 रूप्यकाणां, सर्षपस्य 13,400, चणकस्य 83, गोधूमस्य च 25 रूप्यकाणां प्रति क्विंटल मितं परिवर्धनं विहितम्. एतदतिरिच्य मंत्रिमंडलेन हरितोर्जा वीथि इत्यस्य तृतीय चरणं अथ ऐतिहासिकी पीएम धारा योजना च समनुमोदिता, येन राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च 35,000 गीगावाट परिमितस्य नवीकरणीयोर्जा उत्पादनस्य सुगम संचारणं भविष्यति. भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य तटीय कर्णाटक, केरलम, माहे, आंतरिक कर्णाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु विद्युत गर्जनेन सह प्रबल वृष्टिः पूर्वानुमानिता. ऋतु विभागेन अद्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा प्रदेशेष्वपि समानैव ऋतु परिस्थितयः प्रवर्तिष्यन्ते इति संभावना अभिव्यक्ता. विभागेन उक्तं यत् रायलसीमा, आंतरिक कर्णाटक, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय प्रदेशेषु अपि विद्युत गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य च संभावना अस्ति. जापान देशे प्रवर्तमानासु एशिया क्रीडासु भारताय ह्यः अद्यावधि सर्वाधिकः सफल दिवसः अभवत्. भारतेन 4 सुवर्णपदकानि प्राप्तानि. अनेन भारतस्य पदक संख्या आहत्य 6 अभवत्, यस्मिन् 10 सुवर्णपदकानि, 21 रजतपदकानि तथा 39 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति. महिलानां हॉकी क्रीडायां भारतं ह्यः दक्षिण कोरिया दलं 2-0 इत्यंकैः पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्. तत्रैव स्क्वॉश क्रीडायां भारतस्य पुरुष दलं महिला दलं च उपान्त्य

0: समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिन्दी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के

0: लाभों का उल्लेख किया।
1: आयुष्मान भारत पीएम जय,
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
4: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल

0: था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
1: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
2: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
1: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटवर्ती और भीतरी इलाकों केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
3: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई के फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया और लोगों की जान बच गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। भारत को इस असाधारण नायक पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया।

0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने साबित कर दिया कि असली हीरो सबसे मुश्किल समय में ही सामने आते हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कैप्टन स्मिथ मच्छार की बहादुरी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी अधिकारी और देशभर के अन्य हितधारकों की भागीदारी होगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएडी के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकीय पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिन्दी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य नर्सिंग सेवा के 101वें स्थापना दिवस पर उन सभी नर्सिंग कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है जो एक सदी से भी अधिक समय से समर्पण, करुणा और सेवा की भावना के साथ बहादुर सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नई दिल्ली में सफदरजंग मकबरे पर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 में भाग लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता की शुरुआत घर से होनी चाहिए और इसका विस्तार कार्यालयों, आसपास के क्षेत्रों तथा सार्वजनिक स्थानों तक होना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वच्छता के लिए किए गए योगदान का भी जिक्र किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान की थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की खंडपीठ ने संकेत दिया कि दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित होने वाले संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के शताब्दी समारोह में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें, यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोह का समापन होगा जो पिछले 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री यूपीएससी शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में यूपीएससी और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, भारत सरकार के विशिष्ट अधिकारी, शिक्षाविद और काफी लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस सब का विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसियार खान, मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट विच इज मार्किंग द सेंटिनरी ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट अपॉइंट्स इंडिया सिविल सर्वेंट्स। एंड नाउ श्री अजय कुमार, चेयरमैन यूपीएससी, इज एड्रेसिंग।
2: माननीय कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय कैबिनेट सचिव श्री सोमनाथन, संघ लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्यगण, राज्य लोक सेवा आयोगों के सम्माननीय अध्यक्ष एवं

0: सदस्यगण, संघ लोक सेवा आयोग के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष और सदस्यगण, वर्तमान और सेवानिवृत्त सम्मानीय अधिकारीगण, सम्मानीय वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, विशिष्ट अतिथिगण और मेरे प्रिय सहयोगियों, संघ लोक सेवा आयोग की शताब्दी के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और सम्मान की बात है। मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे संस्थान की अध्यक्षता करता हूं जो सिविल सेवाओं और सशस्त्र बलों के लिए सुयोग्य अधिकारियों का चयन करता है। यह वे अधिकारी हैं जो दशकों से राष्ट्र के निर्माण एवं सुरक्षा में लगे रहे हैं और आने वाले समय में विकसित भारत के सपने को साकार करने की जिम्मेवारी भी इनके कंधों पर रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हम केवल आयोग के 100 वर्षों की का जश्न नहीं मना रहे हैं बल्कि लोक विश्वास के 100 वर्षों का महोत्सव भी मना रहे हैं। आजादी के बाद पीढ़ियों से देश के युवा देश सेवा के सपने लेकर आयोग के द्वार पर आते रहे हैं और आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें केवल और केवल उनकी योग्यता की कसौटी पर ही कसा जाए, कोई भेदभाव नहीं, पूरी निष्पक्षता से उनका चयन हो। आयोग पर विश्वास केवल भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, ये भारत के संविधान द्वारा आयोग को सौंपी गई समस्त जिम्मेवारियों में झलकता है, चाहे वो अधिकारियों की नियुक्ति हो, पदोन्नति हो, डेपुटेशन या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का मामला हो। आयोग ये भली भांति समझता है कि विश्वास बनने में वर्षों लग जाते हैं और उसे बनाए रखना उससे भी बड़ी साधना है, इसलिए आयोग के लिए हर कार्य केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक नैतिक दायित्व है जिसे हम प्रतिबद्धता, प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा से निभाने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आयोग हर साल लगभग 250 भर्ती प्रक्रियाएं आयोजित करता है। इसका अर्थ है लगभग हर वर्किंग डे पर आयोग कोई ना कोई नया परिणाम घोषित करता है। सन 2013 में हमारी परीक्षाएं केवल 45 शहरों में आयोजित होती थीं, आज देश के 86 शहरों में होती हैं। आज सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में लगभग 30% महिलाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से डुप्लीकेट एप्लीकेशंस की पहचान, उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए गए करोड़ों दस्तावेजों का OCR द्वारा रियल टाइम इवैल्यूएशन और परीक्षा केंद्रों पर लाखों उम्मीदवारों का फेस ऑथेंटिकेशन कुछ ऐसे हालिया उपाय हैं जिन्हें आयोग ने निष्पक्षता और सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हम शताब्दी का उत्सव मना रहे हैं तो हम कृतज्ञतापूर्वक उन सभी का भी स्मरण करते हैं जिनकी साधना से इस संस्थान को यह गरिमा मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस शताब्दी समारोह को हम सभी के लिए और भी स्मरणीय बना दिया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
1: UPSC के अध्यक्ष अजय कुमार जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से विनम्र निवेदन, अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय
1: और अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे।
3: परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि आज के दिन का क्या महत्व है, क्या अहमियत है, क्या इतिहास है। आज के दिन हम एक ऐसी संस्था के 100 साल मना रहे हैं जिसका जन्म हिंदुस्तान की आजादी से पहले हुआ था। देयरफॉर लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन विच कैरीज द लेगेसी ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एंड द फ्लेवर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया।

0: सौ वर्षों की इस गौरवमय यात्रा में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस विशाल देश में अनेकों अनगिनत छिपी हुई विभूतियों को तलाशा, खोजा, फिर तराशा और तराश कर इस काबिल बनाया कि वो देश की प्रशासनिक जिम्मेवारियां निभा सके। एंड देयरफॉर यूपीएससी ट्रूली पर्सोनिफाइज सरदार पटेल्स विजन ऑफ स्ट्रांग, पावरफुल एंड प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि 100 साल के इस लंबे सफर में पिछले 10-12 साल एक खास मकाम रखते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए गवर्नेंस रिफॉर्म्स के चलते इन 12-13 सालों में यूपीएससी ने कई आयाम हासिल किए, कई कीर्तिमान स्थापित किए। नतीजे के तौर पर जहां यूपीएससी के द्वारा होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, वहीं साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता में इजाफा हुआ और लोगों का भरोसा भी बढ़ा। यदि बात करें संख्या की, तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में यूपीएससी द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या रही 45,431 और इसकी तुलना में एनडीए के पहले 10 वर्षों में ये संख्या बढ़ करके हो गई 50,906 और अगर हिसाब लगाया जाए 12 साल का तो ये आंकड़ा 65,000 पार कर जाता है। अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे यूनिफाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन इंटेग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर, जैसे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सेंटर ऑफ चॉइस, जैसे प्रोविजनल आंसर की ऑन द वेबसाइट और प्रतिभा सेतु सिविल सर्विसेज एग्जाम के वो उम्मीदवार जो आखिरी चरण में किसी कारण असफल रह गए उनके लिए विकल्पित जॉब ऑप्शंस, और अभी हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट। आज यूपीएससी एक रोल मॉडल बन चुका है देश विदेश की हर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। आज दुनिया भर से अनेकों मुल्कों से प्रतिनिधि मंडल यहां आकर के यूपीएससी की नियुक्ति प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। आज यूपीएससी एक बेंचमार्क है, एक यार्डस्टिक है, एक मापदंड है जिसके ऊपर हर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी पूरा उतरना चाहती है। और अंत में केवल इतना कहना है कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे सामने सन 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की रचयिता है यूपीएससी। यूपीएससी इज इंडीड द आर्किटेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रूट टू डेस्टिनेशन 2047। विरासत और विकास का यह खूबसूरत मिश्रण इसी तरह बना रहे, इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was Dr. Jitendra Singh,
2: आपके the
1: Minister of State in charge of the Department of Personnel, Training, Pensions and Grievances. And the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, is the guest of honor at the centenary celebrations of the Union Public Service Commission. And a short film on UPSC.
3: Karodon sapne aur ek atoot kasauti. Merit. Saal dar saal, jan seva ke liye 200 se adhik parikshaon ke madhyam se सबसे योग्य प्रतिभा को चुनना, यूपीएससी द्वारा सटीकता का राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें भाग लेती है भारत की विविधता, 48 विषय, 22 संवैधानिक भाषाएं, लाखों परीक्षक और अंत में सिर्फ एक मेरिट लिस्ट। इतनी विविधता को एक ही राष्ट्रीय कसौटी पर लाना, यही यूपीएससी की उपलब्धि है। 100 वर्षों में परीक्षा का आकार बढ़ा तो अवसर का दायरा भी। 1957-58 में

0: लगभग 1000 अनुसूचित जाति कैंडिडेट से 450 गुना बढ़ना, 100 से भी कम अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट से आज 1500 गुना बढ़ना, दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए सेंटर ऑफ चॉइस, अतिरिक्त समय, स्क्राइब की सहायता मिलना, बदलते भारत के साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी, 1952 में 3 से बढ़कर 2025 में लगभग 300 हुई, जिनमें टॉप 25 में 11 महिलाएं शामिल हैं। लाखों कैंडिडेट्स, हजारों परीक्षा केंद्र, निष्पक्षता की रक्षा कैसे हो? यूपीएससी ने चुनी न महंगी मशीन है, न भारी ढांचा, बस एक स्मार्टफोन। 2025 से सभी 2072 केंद्रों पर रियल टाइम फेस ऑथेंटिकेशन, 7 सेकंड में पहचान, हर मिनट 12,000 सत्यापन, एआई से एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स की जांच, प्रतिभा सेतु, अंतिम सूची से चूक गए प्रतिभाशाली कैंडिडेट्स को देता है एक और अवसर। तभी तो सर्वोच्च अदालत से लेकर लाखों युवाओं का यूपीएससी पर है अटूट भरोसा।
1: यूपीएससी एंड इट्स कंडक्ट इज ऑलवेज टॉप नॉच। देयर इज नो प्रॉब्लम इन कंडक्टिंग ऑफ पेपर्स, देयर इज नो रीड शेड्यूलिंग ऑफ पेपर्स, नो कैंसिलेशन ऑफ पेपर्स। आई थिंक दैट्स ऑलमोस्ट द बेस्ट बॉडी यू कैन गेट।
2: बहुत ही ज्यादा फेयर सिलेक्शन होता है कि आप आओगे, आप अपनी तैयारी करके आओ और आपको मौका दिया जाएगा और आपका इवेल्युएशन होगा।
0: 100 वर्षों में भारत बदला, यूपीएससी भी बदला, लेकिन लक्ष्य वही है, प्रतिभा की तलाश, निष्पक्षता का संकल्प और अडिग रहकर हर कर्तव्य का पालन।
3: कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं, संकल्प है। ये समय तेजी से बदलाव का समय है, आपकी भूमिका भी, आपके अधिकारों से नहीं, आपके कर्तव्य और उनके पालन से तय होगी।
0: यूपीएससी, 100 years of selecting India.
4: संघ लोक सेवायोग के 100 वर्षों की यात्रा को दिखाती हुई है फिल्म का प्रदर्शन किया गया भारत मंडप पर।
5: देशवासियों की सेवा आराधना कभी प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ का गौरव पाता है, तभी गुलामी की मानसिकता को त्याग कर कर्तव्य पथ, कर्तव्य का बोध कराता है और हर
4: भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री शताब्दी स्मारक टिकट हिस्सा ले रहे हैं,
5: शताब्दी स्मारक सिक्का एवं लोक सेवा
4: शताब्दी स्मारक टिकट और सिक्का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विमोचन जारी किया जा रहा है।
6: And the Honorable Prime Minister will now release a commemorative postage stamp, a commemorative coin and a publication titled The 100 Landmark Judgments. And the postage stamp is priced at 5 rupees and it says 100 years of Union Public Service Commission. It's indeed a collector's item. And the postage stamp and cover is a special commemorative postage stamp and cover that is available as a collector's item. And this also, a beautiful coin which depicts the UPSC building from 1926 to 2026, and it is valued at 100 rupees. And the publication 100 Landmark Judgments, the commemorative postage stamp, the commemorative coin and 100 Landmark Judgments publication have been released by the Honorable Prime Minister.
4: Maranani Pradhanmantri ne smarak ticket aur sikka jari kiya. Aapko bata de,
5: 140 crore bhartiyon ki aakankhshaon ka
4: यूपीएससी के 100 वर्ष के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया रहा है। अब समारोह
6: एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द गैदरिंग हियर टू मार्क 100 इयर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी,
3: केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी,

y que Misadi y Viswamnathanji, Ajay Kumar ji, UPSC के सभी माननीय सदस्यगण, अलग अलग राज्यों से आए सभी पीएससी के चेयरमैन, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं आज इस बात करने से पहले कल जो एक घटना घटी है और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें। साथियों, आज का ये दिन यूपीएससी के 100 वर्षों के उत्सव के साथ ही एक विरासत का भी उत्सव है। ये उत्सव उस आकांक्षा का है जिसे हर वर्ष लाखों लाख युवा उसे जीते हैं। ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, टेक्नोलॉजी बदली, सिलेबस बदले, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। और ये आप सभी की बहुत बड़ी पूंजी है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर अभी यहीं स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है। मैं 100 वर्ष की इस यात्रा से जुड़े सभी महानुभावों का वंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी मैं एक छोटी सी गैलरी बनाई है, उसका निरीक्षण कर रहा था और आप सबसे भी कहूंगा कि

समयाकुल परिवर्तन किए हैं और संस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। जब मैं गैलरी देख रहा था तो 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी प्रक्रिया से जब गुजरे थे उसकी सारी जानकारी वहां है। और मेरा इस बात पर ध्यान गया कि उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी लेकिन संस्कृत का पेपर हुआ करता था और सुभाष बाबू ने संस्कृत में पेपर लिखा है। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करूंगा। आजादी के बाद उनके सामने केवल एक देश को आजाद रखने की चुनौती नहीं थी, उनके सामने एक राष्ट्र को चलाने की चुनौती भी थी। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जिस स्टील फ्रेम की जरूरत थी, वो स्टील फ्रेम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। उन्होंने इस संस्था को आजाद भारत का एक प्रमुख स्तंभ बनाया, इसे सशक्त किया। साथियों, 1926 में जब इस संस्थान की नींव रखी गई थी तब उस समय की प्राथमिकताएं अलग थी। उस समय व्यवस्था का फोकस और उसका समर्पण दोनों ही ब्रिटिश राज के प्रति था। देश आजाद हुआ तो आजाद भारत के सपने और भारत की व्यवस्था ये फोकस में रहे, केंद्र में रहे। बीते दशकों में यूपीएससी ने अपने दायित्वों को बेहतरीन तरीके से निभाया है और इस बारे में यहां मन से भी काफी बातें हुई हैं। और इसलिए मैं न उसका पुनरावर्तन करना चाहता हूं, न ही उसके विस्तार में जाना चाहता हूं। इतिहास से आगे बढ़कर अब हमारे सामने भारत का भविष्य इंतजार कर रहा है। 21वीं सदी का एक क्वार्टर, 25 साल बीत चुके हैं। आने वाले 20-25 साल भारत के लिए, भारत के हर व्यक्ति, भारत की हर संस्था के लिए बहुत अहम है। इसलिए आज मैं अपनी चर्चा का फोकस इसी दिशा में रखूंगा। साथियों, विकसित भारत के लिए अब जिस तरह की गवर्नेंस देश को चाहिए उसका बहुत बड़ा माध्यम यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोग भी हैं। आज आप जिन युवाओं की भर्ती कर रहे हैं वो विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे और वही विकसित भारत के सबसे बड़े बेनिफिशियरी भी होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें दो कसौटियों को हमेशा याद रखना है। पहली कसौटी है नेशन फर्स्ट और दूसरी कसौटी है सिटीजन फर्स्ट। यही दो कसौटियां हैं जिन पर हर सिलेक्शन को कसा जाना है। और जब इस

भाव से कैंडिडेट को परखा जाएगा, इस भाव से भरे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, तो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति उतनी ही सहज हो जाएगी, आसान हो जाएगी। साथियों, 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। भारत आज के मुकाबले और अधिक अर्बन होगा, गांव और शहरों का अंतर कम होगा और हमारे नागरिकों, खासकर युवाओं के एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस कहीं ज्यादा बड़ी होगी। आज ही इसका बदलाव दिखाई दे रहा है। इसलिए आज सवाल सिर्फ सर्विस डिलीवरी का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या पब्लिक सर्विसेज आज की इंस्टेंट डिलीवरी वाली दुनिया की गति उसको पकड़ पा रहे हैं क्या, उस हिसाब से चल पा रहे हैं क्या। आज नागरिक किसी सर्विस के लिए हफ्तों या महीनों का इंतजार नहीं करना चाहता। जब एआई हजारों डॉक्यूमेंट्स को कुछ ही क्षणों में प्रोसेस कर सकता है, जब सरकार के पास रियल टाइम डाटा उपलब्ध है, तो नागरिक तेजी से समाधान चाहता है। यही बदलती हुई सोच हमारी सिविल सर्विसेज से भी नए बदलाव की मांग करती है। इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं, पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है। क्योंकि जब मोटिवेशन सही होगा तो बदलती जन आकांक्षाओं के साथ चलना भी आसान होगा, ढलना भी आसान होगा। साथियों, आप में से काफी लोग इस बात से परिचित है कि मैं जब ट्रेनी ऑफिसर से मिलता हूं तो उनसे कहता हूं कि वे लिखकर रखे प्रारंभ में ही और खुद लिख करके उसको रखे, वे सिविल सर्विस में क्यों आए हैं। क्योंकि समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, नई चुनौतियां आती हैं, ऐसे समय में वही छोटा सा नोट उन्हें उनके मूल उद्देश्य की याद दिलाता है। यह उनके लिए एक सेल्फ अप्रेजल टूल भी बन जाता है। यूपीएससी और राज्यों के आयोग भी कुछ ऐसी व्यवस्था को विकसित करने के बारे में विचार कर सकते हैं। साथियों, हमने अतीत का वो दौर देखा है जब माना जाता था कि सरकार ही माई बाप है, लेकिन आज ये दौर है जिसमें हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। यानी देश का नागरिक हमारे लिए किसी देव से कम नहीं है। हमारे

0: नागरिक की सेवा सर्वोपरि है। इसलिए साथियों, आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका मूल सिद्धांत है प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस। प्रो पीपल यानी सरकार की सुविधा को देखते हुए नहीं, बल्कि नागरिक के हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम करना। प्रोएक्टिव यानी जब समस्या आए तब एक्शन के बजाय समस्या को पहले ही एंटीसिपेट करके उसके समाधान तैयार हो। गुड गवर्नेंस यानी सरकार का अभाव भी ना हो, दबाव भी ना हो और अनावश्यक प्रभाव भी ना हो। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों ही जगह हमें अपने सिलेक्शन प्रोसेस को इसी स्पिरिट के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो देश की आवश्यकताओं को समझे, जो कानून का पालन कराए, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है। साथियों, आज जिस तेजी से युग बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, वो हम सब देख रहे हैं। इसके बाद जो आने वाला समय है उसमें नई तरह की चुनौतियां समाज के सामने आने जा रही है। एआई को लेकर इस समय विश्व में जो चर्चा छिड़ी हुई है उससे हम सब परिचित हैं। ऐसे में हमारे सिविल सर्वेंट्स भी अलग तरह की परिस्थितियों में काम करेंगे। इन्फॉर्मेशन वॉर की स्थिति होगी, डीपफेक्स होंगे, एल्गोरिथमिक बायस के चैलेंज होंगे, क्लाइमेट जस्टिस जैसे कॉम्प्लेक्स सवाल होंगे। ऐसे में हमें चयन प्रक्रिया में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूरदृष्टि को टेस्ट करने का भी, उस प्रयासों को भी प्राथमिकता देनी होगी। साथियों, हम सभी जानते हैं देश आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से चल रहा है। ऐसे समय में हमारी परीक्षा कराने वाली एजेंसीज को उन रिफॉर्म्स पर तेजी से काम करना होगा जो आज के समय की मांग है। जैसे परीक्षाओं को कराने में लगने वाला समय एक बहुत अहम विषय है। परीक्षा को हमें केवल एक इवेंट की तरह नहीं देखना है, ये इवेंट से कहीं अधिक युवाओं के भविष्य, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। परीक्षाओं में कुछ महीनों की देरी युवाओं के लिए बड़ा संकट बन सकती है। कोचिंग की फीस, रेंट, ट्रांसपोर्ट का खर्च, ये बहुत बड़ा बोझ उस परिवार पर होता है। इसलिए हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम टाइम सर्टेनिटी के सिद्धांत को अपनाए, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए यूपीएससी को, देश के सभी चयन आयोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाढ़ को लॉक किए बिना हमारी एग्जामिनेशन साइकिल छोटी कैसे हो। वैसे मैं अभी गैलरी में देख रहा था, करीब 100 दिन कम किए हैं, ये तो अब बधाई के पात्र है ही है और मैं आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है, यह एक इक्विटी रिफॉर्म भी होगा। साथियों, आप सभी चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस और डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं। पिछले 10 साल में एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, जिसमें से देश के सभी सीएस 3 दिन साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। उसी प्रकार से 3 दिन के लिए डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश के सभी डीजीपी इकट्ठे होकर के बातचीत करते हैं। और इन कॉन्फ्रेंस में एक प्रयास होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जाने, समझे, सीखे और उचित लगे तो उन्हें अपने राज्य में लागू करें। मुझे बताया गया है कि यूपीएससी हर वर्ष स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। अब उसको और विस्तार देकर के और अधिक प्रोडक्टिव बनाने के लिए और अधिक नए विचारों से भरने के लिए भी उसके रूप रंग व्यवस्था को कैसे नया आयाम दिया जाए, उस पर जरूर आप सोचते होंगे। ऐसे प्रयासों से अलग अलग संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा होती है, लेकिन साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी स्टडी करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने प्रोसेस और प्रोसीजर्स की एफिशिएंसी ये कैसे बढ़े, इस पर भी फोकस चर्चा होनी चाहिए। क्लोज्ड लर्निंग के इस प्रयास से यूपीएससी को भी फायदा होगा और हर राज्य के चुनाव चयन आयोग को भी जरूर लाभ होगा। हमें प्रोसेस और प्रोसीड्यूरल के मानकों को स्टैंडर्डाइज करने पर भी विचार करने की आवश्यकता है, इससे युवाओं को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, एक और विषय, यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग का भी है। ये काम भी निरंतर होते रहना चाहिए। मिशन कर्मयोगी के तहत जो आईगॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसका उपयोग हमारी इन अंदरूनी व्यवस्थाओं के लिए भी, हमारे साथ काम करने वाली टीम के कैपेबिलिटी के लिए भी इन सारे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जा सकता है। साथियों, आप सभी को हमेशा याद रखना है कि आपका काम युवा शक्ति के भविष्य से जुड़ा है, यानी युवा शक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का जो मिशन है, आप उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और बीते वर्षों में आपने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई भी है। जब यूपीएससी का गठन हुआ था, तब बड़े शहरों, समर्थ परिवारों और बड़े संस्थानों से पढ़े युवाओं को अवसरों का लाभ अधिक मिलता था, लेकिन आज गांवों और कस्बों के युवा भी पब्लिक सर्विस में पहुंच रहे हैं। हमारी बेटियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। 1952 में सिविल सर्विसेज में विमेन कैंडिडेट की संख्या सिर्फ 3% थी, 3%। आज यह 30%, 30% से अधिक हो चुकी है। और यूपीएससी के पूरे इतिहास में चार विमेन चेयरपर्सन रही है पूरे यूपीएससी के इतिहास में। ताली बजने का समय अब आएगा। पूरे यूपीएससी की हिस्ट्री में चार, उसमें से तीन 2014 के बाद बनी है। ये बदलाव केवल आंकड़े नहीं है, ये बताते हैं कि देश में अवसरों का दायरा कितना बढ़ा है। साथियों, 1976 में जब यूपीएससी को 50 साल हुए थे, उस समय की तुलना में परीक्षा देने वालों की संख्या में 45 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है, 45 टाइम। यानी आज हमारे सामने टैलेंट का एक बहुत बड़ा पूल है। ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अब हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि जब इतना बड़ा टैलेंट पूल हो, पूरी दुनिया जिस पर ईर्ष्या करती है, जब सामने इतना बड़ा टैलेंट पूल है, तो आप सिर्फ एक कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं जो आगे चलकर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ग्राउंड लेवल पर लोग उसी को गवर्नमेंट मानेंगे। इसलिए आप सभी पर सही व्यक्ति के चयन का बहुत बड़ा दायित्व है। साथियों, यूपीएससी ने अपने पहले 100 साल में अपनी विश्वसनीयता को निरंतर मजबूत किया है। अभी संस्था को अपनी दूसरी सदी में नई संभावनाओं, नई चुनौतियों के हिसाब से विश्वसनीयता को और समृद्ध कर रहा है। जो वैल्यूज आज तक हमारी ताकत रही है, उन्हें बनाए रखते हुए भविष्य के अनुरूप अपग्रेड भी करना है। यूपीएससी की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, योग्यता, गोपनीयता और निष्पक्ष प्रक्रिया, यही उसकी पहचान है। ये मूल्य हमेशा बने रहना चाहिए। इसी आग्रह के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: The Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, said that he spoke to the parents and the spouse of Captain Smith Machar, who saved many lives in an aircraft that was on its way from Dubai to Israel yesterday. And he said that this displays India's commitment to peace and to fight terrorism. The Prime Minister said that he was pleased to see a photograph of Netaji Subhash Chandra Bose, who appeared and passed the 1920 UPSC examination, and he had appeared for the exams and wrote the paper in Sanskrit. The Prime Minister observed that the Union Public Service Commission played a pivotal role in shaping the roadmap of our bureaucrats and our police officers. He said that the coming 2 decades would be extremely significant for every citizen and every institution as India embarks on Viksit Bharat. During Viksit Bharat governance, UPSC and state PSCs will play a great role. He said that touchstones

0: tones should be remembered by the civil servants. The first is nation first and the other citizen first. 2047's India will be totally different from now. Nagrik Devo Bhava should be the mantra of every civil servant as it is the mantra of the government. Service to citizens should be the top priority of officers of the central and state governments. Citizens require quick solutions to their grievances. The examination cycle's timeline may be brought down further, observed the Prime Minister. He urged the Commission to standardize processes and procedures and said that UPSC is the link between Yuva Shakti and Rashtra Shakti.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने यूपीएससी की ऐतिहासिक यात्रा, लोक सेवा की भूमिका और देश की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे. प्रधानमंत्री ने इस समय युवाओं और लोक सेवा में उनकी भूमिका की चर्चा भी की. प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सेवा में प्रतिभा, जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के महत्व को भी रेखांकित किया. श्रोताओं, 1 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम में आयोजित इस समारोह संघ लोक सेवा आयोग की 100 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा को एक साथ देखने का अवसर प्रदान करता है. 1 अक्टूबर 1926 को शुरू हुई यात्रा, फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चरण और स्वतंत्र भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का संवैधानिक स्वरूप, इन सभी प्रवाणों से गुजरते हुए यूपीएससी ने आज अपना शताब्दी समारोह मनाया. आज का यह समारोह अतीत की विरासत को स्मरण करने के साथ साथ आने वाले समय के लिए नई सोच, नई दिशा पर विचार करने का एक अवसर भी है. भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इस विशेष प्रसारण से मैं शहसियार खान, अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं. नमस्कार. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.
2: केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या स्थापनेला 100 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते टपाल तिकिटाचं आणि विशेष स्मारक नाण्याचं अनावरण झालं. याचं थेट प्रसारण आता आपण ऐकत होतात आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून. दुपारचे 12 वाजत आता वनिता मंडळ नागपूर केंद्रावरून.

0: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे. दुपारचा एक
1: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है. आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए प्रेरित हों.
2: हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो. इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवो भव है और नागरिकों की सेवा करना सबसे जरूरी है. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं. उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र बलों के बीच आपसी तालमेल और एकीकरण पर बहुत जोर दे रही है. आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर श्री सिंह ने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत कर दिया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर और कुशल हो जाएगा. रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने का आग्रह किया.
3: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है. जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए. यह तभी संभव है.
1: दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक

0: सांगितला तर आपली जी जैवविविधता आहे पिकांमधली त्याचे आकडे मी तुम्हाला थोडक्यात सांगितले तर किती विविध जातींना संपूर्ण होतं. तर भाताची आपल्याकडे 2 लाखाहून जास्त बियाणी होती. कडधान्य, भरडधान्य ह्याच्यामध्ये 1000 भाताच्या जाती होत्या आपल्याकडे. त्यानंतर भाजीपाला आहे, रानभाज्या आहेत, रानभाज्यांची तर 1000 जास्त आपल्याकडे रानभाज्याच आहेत. नंतर 850 जास्त कंद आहेत. पण हरित क्रांतीनंतर ह्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात बदल होऊन गेले, कारण हायब्रिड बियाणांनी आपल्या बाजारपेठ कब्जा केला आणि त्यामुळे कुठेतरी ही जी पारंपरिक बियाणी होती जी आपल्याकडे काही लोकांनी जपली, तर आपल्याला जर ही पारंपरिक बियाणी जपायची असेल तर सर्वात प्रथम त्याची लागवड होणे मोठ्या प्रमाणात हे गरजेचं आहे आणि ते पारंपरिक पद्धतीने कशी साठवली जातील ह्याचं सुद्धा ज्ञान आपल्याला असलं पाहिजे. पारंपरिक बियाणी जपण्याची प्रक्रिया कशी असते तर लागवड केल्यानंतर जेव्हा कुठलंही पीक आहे त्याच्या काही ज्या बिया येतात तर चांगल्या पद्धतीच्या बिया निवडणं हे सर्वात महत्वाचं काम असतं. नंतर ते पूर्ण वर्षभर कसं टिकून राहील, म्हणजे आपली जुनी पद्धत होती राख लावून ठेवणं, कडुलिंबाचा पाला किंवा निरगुडीचा पाला आणि मुळात जी साधनं होती ज्याच्यामध्ये वाताच्या टोपल्या असाव्या त्याच्यामध्ये ठेवणं, त्या नसतील मातीच्या भांडी आहेत त्याच्यामध्ये जपून ठेवणं, अशा पद्धतीने आपण करायचं.
1: श्रोतेहो, आजच्या कार्यक्रमात आपण पारंपरिक बियाण्याचा वापर करून पर्यावरण संवर्धनाकडे कसं
2: वळू. नमस्कार, आकाशवाणीचे दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है. उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया. सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर. वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया. भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की. पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए. और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता. 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है. आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है.
3: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है.
3: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है. 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है. 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है. 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है.
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाले

0: में सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने ये पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
1: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी उसी तरफ फ्लेक्सिबल और एफिशियंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@airnewshindi और public@airnewsalerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला

0: सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
2: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
1: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
2: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसेर जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता।

0: जापान में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या

0: फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 2047 तक का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 571 अंक कम होकर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 पर दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 32 कांस्य पदकों के साथ 65 पदक लेकर 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. The Prime Minister was addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. He said today, 21st century India is moving forward with a new work culture and its core principle is pro-people, proactive, good governance. He stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
0: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं, पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो।

0: अथ वार्ताः विशदीकृत्य अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे संघलोकसेवायोगस्य शताब्दी समारोहं सम्बोध्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी व्यजिज्ञापत् यत् राष्ट्रं परिष्कारार्थं द्रुतगत्या त्वरितम् अग्रे सरति अतः परीक्षा संचालिकाः संस्थाः अपि राष्ट्रानुकूल परिष्कृत कार्याणि कुर्युः प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् लोकसेवासु तादृशः एव युवानः समागच्छेयुः येषां लक्ष्यं न तु केवलं पदप्राप्तिः प्रत्युत निष्कामभावेन लोकसेवा वर्तते असौ व्याहरत् यत् एकविंशतिशतकस्य भारतं नवीनकार्यसंस्कृत्या सह अग्रे याति श्रीमोदिना प्रतिपादितं यत् परीक्षा न तु काचित् सामान्यम् अनुष्ठानम् अपितु यूनां भाविजीवनप्रवाहेन सह सम्बद्धा अस्ति परीक्षासु कतिपयानां मासानामपि विलम्बः यूनां कृते अतीव कष्टकरो भवति अतः परीक्षाव्यवस्था समयनिश्चयता सिद्धान्तं दृढतया अनुसरेत्
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली सरकारें बदली लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है
0: श्रीमोदिना प्रतिपादितं यत् संघ लोक सेवा आयोगस्य शतवर्षीयायां यात्रायां युगानि प्रशासनानि तन्त्राणि पाठ्यक्रमाः च परिवर्तिताः तथापि अस्यां संस्थायां जनसाधारणानां श्रद्धा विश्वासः अद्य यावत् तथैव अविचलः अक्षुण्णश्च वर्तते श्वः गांधी जयन्त्यावसरे अशेषे हि देशे विशेष ग्राम सभाः समाहूयन्ते पञ्चायतानां सुदृढीकरणाय सार्वजनिक सेवानां परिष्कारार्थं ग्रामीण भारते जीवनस्य गुणवत्तां परिष्कारार्थं च लक्ष्यीकृतानां परिवर्तनशील शासन परिष्काराणां तथा उपक्रमाणां विषये च ते चर्चां विधास्यन्ति ग्रामीणाभिवृद्धि मन्त्रालयः अवोचत् यत् एताः विशेष ग्राम सभाः 26-2017-2000 वर्षयोः पीपल्स प्लान कैंपेन पीपीसी सबकी योजना सबका विकास इत्यस्यापि आरंभं विधास्यन्ति अद्य नवदिल्ल्यां रक्षालेखा दिवस समारोहम् अधिकृत्य भाषमाणः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अब्रवीत् यत् तिसृषु सैन्य शाखासु या समवाय समन्वय भावना प्रवर्त्यते सा एव रक्षालेखा विभागस्य वित्तीय तन्त्रे अपि समन्वेतव्या मन्त्री प्रवरेण प्रोक्तं यत् यदि वित्तीय प्रणाल्यः अपि एकीकृत रूपं भजेरन् तर्हि समग्रं रक्षा प्रबन्धनं सुतरां कुशलं समर्थं च सेत्स्यति असौ राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रिय स्तरयोः गुणवत्तायुक्त लेखा परीक्षणस्य सर्वोत्तमाः रीतिः अंगीकर्तुं जगति च एधमानानां मानदण्डैः सह समन्वयं रक्षितुं रक्षालेखा विभागं सप्रश्रयम् अबोधयत्
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट हमारे वेपन्स ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए यह तभी संभव है
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते
3: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स इत्यनुसरन्तु आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्
0: स्वच्छता ही सेवा अभियानस्यान्तर्गतम् अद्य देशव्यापी एकः दिवसः एका होरा एकीभूय इति स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रमः सोत्साहम् आयोजितः अस्मिन् अभियाने बहुभिः केन्द्रीय मन्त्रिभिः मुख्यमन्त्रिभिः वरिष्ठाधिकारिभिश्च भागः गृहीतः विगतमासस्य 17 दिनाङ्कात् आरब्धम् इदम् अभियानम्

0: आमची यानंतरची उद्घोषणा थोड्याच वेळात. आकाशवाणी मुंबई, थोड्याच वेळात प्रादेशिक बातम्या.
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरकिया लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं.
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ. अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें.

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र

0: जाए
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: शेतकरी बांधवांनो, या कार्यक्रमाचे सादर करते होते रोशन जाधव। हा कार्यक्रम कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित करण्यात आला होता। ही आकाशवाणी मुंबई केंद्राची निर्मिती होती।

0: उल्हास केणी यांनी गायलेलं उमाकांत काणेकर यांचं गीत आपण ऐकलं. भुवानंद बोगम यांचं संगीत होतं. सुगम संगीत कार्यक्रम याबरोबरच संपला. 9:09 आता रात्री 11:10 आपण ऐकणार आहोत आकाशवाणी दिल्ली केंद्राचं प्रसारण.
1: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी का भारत जनहितैषी सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया. गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की. बिहार में बाढ़ का कहर जारी. कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर. अमेरिका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए. और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते. भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है. नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है.
2: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है.
2: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है. 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है. 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है. 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है.
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए. नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा.
3: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने. और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है. जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरफ फ्लेक्सिबल

0: एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
2: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
3: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
1: नागर विमान मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
4: We are very, very proud of the bravery and the courage.
5: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है।
4: We are very, very grateful and we are really, really extremely proud.
1: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
6: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
8: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
9: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यह उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
8: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
10: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
8: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाउ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए नशा मुक्त पंजाब से नशा मुक्त भारत की ओर विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: नशे का प्रकोप न केवल इसका सेवन करने वाले बल्कि उनके परिवारों, समाज और देश के भविष्य के लिए भी गंभीर खतरा है और वर्तमान सरकार ने नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस गंभीर विषय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए आज कंट्री वाइड में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजेश कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SPYM। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
2: थैंक यू
1: डॉक्टर कुमार। गृहमंत्री अमित शाह ने कल पंजाब नशा मुक्ति यात्रा में भाग लिया और जलंधर में जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब की समृद्ध विरासत की बात की और कहा उनकी पार्टी नशे की समस्या को पंजाब में पूरी तरह से खत्म करेगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे।
3: जो पंजाब पूरे देश के लिए धान और गेहूं पकाता था, देश की सुरक्षा करता था, वहाँ पर मावा मांग दिया जवाब, माताएं ऐसी रैलियां निकालती। मैं अभी नशे की लत के कारण जिन्होंने जान गंवाई है ऐसे परिवार को मिलकर आया हूँ। एक माँ अपने दो युवा बेटों की तस्वीर गोद में रहकर कहती है, इसको बंद कराओ, मेरे तो नहीं बचे, दूसरे के लाल को बचा लो। पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। सिर्फ पंजाब नहीं, देश भर के लोग मानते हैं कि पंजाब नशा मुक्त होना चाहिए।
1: डॉक्टर कुमार, गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में पंजाब की समृद्ध विरासत की बात की, उसकी जो रिच हिस्ट्री है, और साथ ही ये भी कहा कि वहाँ पे जो नशे का प्रकोप है उसके बहुत गंभीर परिणाम है। कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को पंजाब में, जो नशा मुक्ति का जो एक मुहिम की बात कही जा रही है, ये कितना इम्पोर्टेंट है वहाँ के ओवरऑल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए?
2: माननीय अमित शाह जी ने जो कल डिक्लेयर किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस देश में अगर हाईएस्ट लेवल पे लोग सीरियस हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं या होम मिनिस्टर हैं, तो आई एम श्योर, मैं विश्वास करता हूं कि ये बहुत जल्दी इस पे एक्शन दिखेगा। मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूं पंजाब का। पंजाब, राजस्थान, ये दोनों ऐसे प्रदेश हैं इस देश के जहां ट्रेडिशनली लोग अफीम लेते थे, ओपियम यूज करते रहे हैं और बहुत सारे आपको इसके ऊपर लिटरेचर मिलेगा, बहुत सारा इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। 78-79 के बाद जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन वाले आए और ईरान में आयतुल्ला खोमेनी का रिवोल्यूशन हुआ, तो जो ड्रग पहले ये इन तीन देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान में जो पैदा होता था, जो प्रोसेस होता था, वो यूरोप जाता था थ्रू युगोस्लाविया, मगर चूंकि यहाँ इंटरवेंशन हो गया तो वो सारा का सारा ड्रग पंजाब के थ्रू रूट होने लगा। और वही समय था पंजाब का जब वो काफी डिस्टर्ब भी था। पंजाब में अगर आपको याद होगा आतंकवाद, तो आतंकवाद और ड्रग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बार जो पहला स्टडी वो हमारी संस्था SPYM ने किया था 2002 में, फिर 2008 में, फिर 2015 में, फिर 2018 में भारत सरकार के लिए हमने किया था। तो इन सब में जो नंबर

0: दिख रहा है वो नंबर बहुत भयावह है, और अगर अभी भी अगर कुछ बड़े पैमाने पे नहीं किया जाएगा तो वी विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन।
1: तो आप ब्रॉडली स्टैटिस्टिक्स बता सकते हैं कि कितना विस्तार है इस समस्या का?
0: देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जनरली पंजाब की आबादी लगभग 3 करोड़ है, और 3 करोड़ में 50% फीमेल पॉपुलेशन है, और उसमें भी जो मेल पॉपुलेशन है वो 0 से 15 वाले बहुत कम बच्चे नशा करते हैं। तो लगभग 60-70 लाख लोगों में अगर 12-13 लाख लोग चिट्टा, या जिसको आजकल हीरोइन को चिट्टा आजकल बोलते हैं, वो अगर इतना बड़ा है तो आप सोचिए हर 6ठा-7वां बच्चा, मेल बच्चा नशा कर रहा है, और ये बहुत ही भयावह स्थिति है। और जो पंजाब गवर्नमेंट का जो डेटा है, लगभग 47% जो लास्ट मेरे पास डेटा आया था, 47% लोग पंजाब के प्रिजंस में ड्रग यूजर्स या एनडीपीएस एक्ट में बंद हैं, और लगभग 12 लाख लोग अलग अलग पंजाब सरकार के जो प्रोग्राम है, ओट्स एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है पंजाब का, उसमें रजिस्टर्ड है, डी एडिक्शन सेंटर्स में रजिस्टर्ड है या प्राइवेट सेंटर्स में रजिस्टर्ड है। तो 12 लाख लोग एक बहुत बड़ा नंबर है, और पंजाब यूपी और मध्य प्रदेश राजस्थान उतना बड़ा स्टेट नहीं है, इतना छोटा स्टेट है, तो सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है।
1: जो लोग ऑलरेडी उसमें फंसे हुए हैं उनको सेंसिटिवली उनके साथ डील करना और उनके ट्रीटमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए जो नेटवर्क है उसके बारे में आप हमें बता सकते?
0: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि लगभग 99% उससे ज्यादा बच्चे नशा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम होना चाहिए हर स्कूल में। और देखिए, अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन में बड़ा फर्क है। जैसे लोग जानते हैं कि टोबैको यूज से कैंसर होता है, या गुटखा या इस तरह के च्यूइंग टोबैकोज है वो खाने से उनको कैंसर होता है, मगर वो छोड़ते नहीं है। दे आर अवेयर, उनको जानकारी है, जागरूकता है। प्रिवेंशन के लिए 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है लाइफ स्किल, जिसको हम लोग कहते हैं हुनर, जीवन कौशल, वो स्कूल में दिया जा सकता है कि ना कैसे कहें, अपने दोस्तों के दबाव से कैसे बचें, उन दोस्तों के बीच में न जाएं जो दोस्त ऑलरेडी इसमें फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हर स्कूल में, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने और माननीय अमित शाह जी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था नवचेतना, तो पंजाब के हर स्कूल में नवचेतना का प्रोग्राम होना चाहिए। ये लाइफ स्किल बेस्ड है। दूसरा, जिन बच्चों ने नशा लेना शुरू किया है उनको एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं पीयर लेड इंटरवेंशन, और ये चंडीगढ़ में बहुत सक्सेसफुली हुआ था, जिसमें लगभग 4000 बच्चों को, जो लोग नशा कर रहे थे, उनके पीयर ने उनको वापस स्कूल में दाखिला करवाया, और इन बच्चों को शायद डी एडिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी ये उनकी डिपेंडेंसी बहुत छोटी है, बहुत कम समय का उनका यूज है, मगर वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी है। तीसरी स्ट्रेटजी है, जो ट्रीटमेंट में आ रहे हैं उस ट्रीटमेंट में किसी तरह का कोई बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टिग्मा बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ, और स्टिग्मा प्रिवेंट करता है लोगों को ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर में जाने के लिए। ये प्रिवेंट करता है फैमिलीज को उन ट्रीटमेंट सेंटर्स में ले जाने के लिए, कि लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो ये जब तक तीनों स्ट्रेटजीज नहीं आप लागू करेंगे स्टेट में, तब तक बहुत कुछ हम नहीं अचीव करेंगे।
1: सो डॉक्टर कुमार, नशा मुक्त भारत अभियान सरकार ने शुरू किया 2020 में, और उसमें इसी तरह का, जैसे आप कह रहे हैं कि सेंसिटाइजेशन, लोगों को इस बारे में अवेयर करना कि ये एक समस्या है जिस पे काबू पाया जा सकता है, और सब कम्युनिटी के सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से, और इसमें ऑलरेडी 29.32 करोड़ सिटीजन्स को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और नेशनल अवेयरनेस कैंपेन्स के द्वारा जोड़ा गया है। ये इस तरह के, या जैसे मानस जो एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें एक हेल्पलाइन है जिसमें आप कभी भी फोन कर सकते हैं 1933 और अपनी समस्या काउंसलिंग ले सकते हैं, इस तरह की जो पहल सरकार की है, या आपको लगता है कि इस समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत जरूरी है?
0: देखिए, ये सारे के सारे कार्यक्रम वातावरण निर्माण के लिए होता है। जैसे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम बात करते थे, अब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने कहा मैं भी परेशान था या मैं भी परेशान थी, तो लोगों ने बात करना शुरू किया। वैसे ही अब जब नशे के ऊपर जब बात शुरू हो रही है, तो ये वातावरण निर्माण हो रहा है, और उस वातावरण निर्माण में से प्राइम मिनिस्टर ने 2 अगस्त को एक नेशनल कॉल दिया था यंग लोगों के लिए, तो अलग अलग लोगों ने जो कॉल दिया, बट ये वातावरण का निर्माण हो रहा है, मगर इसमें कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने की जरूरत है। इसमें वो स्टेप लेने की जरूरत है जो साइंस, मतलब विज्ञान और साक्ष्य के आधार पे होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो अच्छे ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उसमें ट्रेंड मैन पावर नहीं है, उसमें वो डॉक्टर्स नहीं है जो समझ सकते हैं कि अब नए प्रकार की दवाइयां बाजार में है उसको यूज किया जाए। तो इन तमाम चीजों पे भी ध्यान देना होगा, अपार्ट फ्रॉम ये जो वातावरण निर्माण की जो आप बात कर रहे हो।
1: तो जो आप चुनौती बता रहे हैं कि ट्रेंड जो मैन पावर है उसकी जो संख्या है वो और भी बढ़ाई जानी चाहिए, इनफैक्ट इसके बारे में बात भी हुई है कि ये स्किलिंग जो है कि कैसे ट्रीटमेंट जो वहाँ पे जो केयर गिवर्स हैं वो कैसे उनको डील करें, तो इस डीलिंग में

0: जो भारत के स्तर पे जो अभियान चल रहा है, लेकिन इसके विस्तार की और भी जरूरत है। आप हमें बता सकते हैं कि अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, या जो महिलाएं यूजुअली जो पूरे परिवार है उसको एक तरह से उसकी नर्चर करती हैं, ऐसे जो पेरिफेरल ग्रुप्स हैं या कम्युनिटी है, उनको किस तरह से उनको इसमें शामिल किया जा सकता है इस मुहिम में?
1: देखिए, मैंने आपसे बताया स्कूल बेस्ड जो प्रोग्राम है और नवचेतना है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। नवचेतना में एक चैप्टर है जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। इसके अलावा दो बड़ा एक पॉपुलेशन है इस देश में, एक है फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसमें आशा है, आंगनवाड़ी है, ANM है। इनको ज्यादा नहीं, 2-3 घंटे का एक ओरिएंटेशन होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ट्रीटमेंट सेंटर्स अवेलेबल है और कैसे पहचाने कि कोई अब इसके गिरफ्त में आ गया। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको, या पंचायती राज की जिम्मेवारी बनती है कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इसमें लेकर आए। क्योंकि जब तक ये तीनों बड़े जो मिनिस्ट्रीज हैं ये ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो हम लोग उस पॉपुलेशन में नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, अभी तो हम लोग सिर्फ शहर की बात कर रहे हैं, शहर में अभी कुछ इलाकों की बात कर रहे हैं, अगर आप पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात कर रही है तो उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन तीनों को आना पड़ेगा।
0: जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ही व्यापक इसमें पार्टिसिपेशन की जरूरत है, तो नशा मुक्ति मित्रास का जो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है जिसमें वॉलंटियर्स जाके समझाते हैं, वो भी आपको लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे, जैसा आप कह रहे हैं कि जो छोटे शहर हैं या रूरल एरियाज हैं, वहां के लिए एक बहुत ही सुगम और प्रभावी एक तरीका है?
1: देखिये, अधिकतर ये जो मित्र बने हैं वो मित्र कहाँ से है, NSS से है, NYK जो माई गॉव आजकल उसका नया नाम हो गया है, NCC है, इन संस्थाओं के बच्चे बने हैं। क्योंकि ये बच्चे दूसरों बच्चों से थोड़े, मैं बेहतर नहीं कहना चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा एक्टिव है और उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। क्योंकि वो अगर वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो लोग उनकी बात सुनते भी हैं। तो इस तरह के जो मित्र बने हैं उनका भी रोल बड़ा अच्छा है, बट उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है, उनको बताने की, उनको एज ए पीयर एजुकेटर उनको ट्रेन करने की जरूरत है। अगर वो ट्रेन हो जाते हैं तो उसका फायदा क्या होगा, हम और यंग पॉपुलेशन में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। एक और बात मैं कहता हूं, जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करने की जरूरत है, और वो भी उतना मुश्किल नहीं है, बट यूनिवर्सिटीज को एंड कॉलेजेस को इनिशिएटिव लेना होगा और उसके लिए भी भारत सरकार के पास प्रोग्राम है।
0: सो आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के पास प्रोग्राम्स हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो एक माइक्रो लेवल पे, उसमें बाकी लोगों की जो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी हो जाती है। डॉक्टर कुमार, आपने शुरुआत में बात कही थी जो बाहर से बॉर्डर के पार से ड्रग्स आती हैं, अब चाहे वो टेररिज्म हो या चाहे वो ड्रग्स हो, ये बॉर्डरलेस कहें कि मेनेसेस हैं, ये सभी को प्रभावित करती हैं और सभी के लिए उतने ही हानि पहुंचती है, उनकी इकोनॉमी को, के पूरे जो पीढ़ी है उसको। तो क्या कहेंगे आप, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितनी जरूरी है इस समस्या से पार पाने के लिए?
1: देखिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बगैर तो आप कहीं नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो सैंडविच है बिटवीन ये जो तीन कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, वहां पे जो कल्टीवेशन होता है उसका काफी बड़ा पोर्शन इंडिया आता है या इंडिया के थ्रू वो बाहर भेजना चाहते हैं। दूसरा जो म्यांमार है, म्यांमार में अभी आपको पता है कि वहां पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो ड्रग अभी ओपियम पैदा हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है, वो हमारे ईस्टर्न जो तीन स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, उससे आ रहा है। तो अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं होगा तो हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा, अगर इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा तो हमें नहीं पता है कि कहां से ड्रग निकल कर आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल जो हमारे संबंध है उन एजेंसीज के साथ जो हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिनको हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो फर्दर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है।
0: सो जैसा आप कह रहे हैं कि हर लेवल पर कोऑपरेशन की जरूरत है, अगर हम भारत की बात करें तो स्टेट लेवल पर जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्सेज हैं उनको, जो सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके साथ मिलकर काम करना है, सभी देशों को साथ मिलकर काम करना है, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर प्रतिबद्धता हो तो कोई भी समस्या पार की जा सकती है। सो इस उम्मीद और आशा के साथ कि नशा मुक्त भारत एक जो सपना है वो साकार होगा, हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर कुमार।
1: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त पंजाब से नशा मुक्त भारत की ओर विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AI

0: आर एन एस डी टॉक्स एट जीमेल डॉट कॉम और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: कंट्री वाइड

0: ये आकाशवाणी है, प्रादेशिक लोक संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है बांग्ला संगीत के अंतर्गत नजरुल गीति। कलाकार हैं श्रीमती तुलीरेखा दत्तो। श्रीमती तुलीरेखा दत्तो 3 दशकों से भारतीय संगीत के प्रति समर्पित हैं। आप एक ख्याति प्राप्त गायिका हैं जिन्होंने नजरुल गीति, भजन, उप शास्त्रीय संगीत तथा शास्त्रीय संगीत जैसी विधाओं में अपना परचम लहराया है। आप अपनी भावात्मक कलाकारी और शास्त्रीय अनुशासन दोनों के लिए जानी जाती हैं। श्रीमती तुलीरेखा दत्तो के संगीत का सफर हमारी बहुमूल्य गुरु शिष्य परंपरा का परिचायक है। पंडित एटी कानन, उस्ताद मोहम्मद दिलशाद खान, पंडित दीनानाथ मिश्रा, पंडित बलराम पिल्लई, विदुषी शुभ्रा गुहो, श्रीमती मीरा बंदोपाध्याय, श्री सुकुमार मित्रा और विदुषी डालिया राहुत समेत देश के सुविख्यात संगीतज्ञों से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन की एक रेट की कलाकार श्रीमती तुलीरेखा दत्तो ने अपने श्रोताओं के समक्ष मनमोहक प्रस्तुतियां दी हैं। संगीत समारोह, मीडिया प्रसारण और व्याख्यानों के माध्यम से देश विदेश में आपने अनगिनत कार्यक्रम पेश किए हैं।
1: Tonight in the national program of regional light and folk music, we present light music in Bengali through the rendition of Nojrul Giti by Srimati Tulirekha Datta. A distinguished vocalist with over 3 decades of dedicated service towards Indian music, Srimati Tulirekha Datta has established herself as a much-sought-after performer in Nojrul Giti, bhajan, semi-classical music, as well as classical music. She is renowned for her expressive artistry and classical discipline. The musical journey of Srimati Tulirekha Datta reflects the rich Guru Shishya Parampara, nurtured under some of the India's most eminent maestros, namely Pandit A.T. Kanan, Ustad Muhammad Dilshad Khan, Pandit Dinanath Mishra, Pandit Balaram Pillai, Vidushi Shubhra Guha, Srimati Meera Bandopadhyay, Sri Shukumar Mitra, and Vidushi Dalia Rahut. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Srimati Tulirekha Datta has enthralled her audience through concerts, broadcasts, lecture demonstrations and national as well as international performances.
0: आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप एक अति प्रचलित नजरुल गीति के साथ करेंगी जिसके रचयिता स्वयं काजी नजरुल इस्लाम हैं। वो विद्रोही कवि जो आज भी हर बंगालवासी के हृदय का गौरव हैं। गीत के बोल हैं महाविद्या आद्यशक्ति परमेश्वरी कालिका, जिसका अर्थ है सभी दैवी स्त्री ऊर्जाओं का एक परम मातृ शक्ति में समावेश है तथा संसार की समस्त सृष्टियां ज्ञान, शक्ति, प्रेम और मुक्ति उसी शाश्वत दिव्य माता से वाहित होती हैं।
1: श्रीमती तुलीरेखा दत्ता बिगिन्स हर प्रेजेंटेशन टुनाइट विद अ वेरी पॉपुलर नजरुल गीति पेंड बाय नन अदर देन द रिवर्ड कवि नजरुल इस्लाम, द पेट्रियट पोएट हु होल्ड्स अ प्लेस ऑफ प्राइड इन एवरी बंगालीज हार्ट। द सॉन्ग गोज एज महाविद्या आद्यशक्ति, meaning the unity of all divine feminine manifestations in one supreme mother, affirming that all creations, knowledge, strength, compassion and liberation flows from the eternal divine mother.

0: नजरुल गीति के अपने गुलदस्ते से श्रीमती तुली रेखा दत्त अब प्रस्तुत करेंगी गीत आधो आधो बोल लाजे बाधो बाधो बोल, जो कि अनकहे प्रेम की सुंदरता की बात करता है, जहां शब्दों से अधिक मौन की भाषा कह जाती है।
1: The next presentation from Srimati Tuli Rekha Datta from her basket of Nozrul Giti is Adho Adho Bol, which celebrates beauty of unexpressed love, where silence often conveys more than words.

श्रीमती तुलीरेखा दत्त की अगली प्रस्तुति नजरुल गीति हेमंतिका एशो एशो हिमेल शीतल बनुतले। हमें प्रकृति की शांत

0: मनोहारी और विपुल सुंदरता से मिलवाती है। कवि नजरुल इस्लाम इस गीत में प्रकृति को अंतर की शांति और आध्यात्मिक जागृति का स्रोत कहते हैं।
1: श्रीमती तूली रेखा दत्ताज नेक्स्ट नजरुल गीति हेमंतिका एशो एशो, विच ग्रीट्स अस विद ट्रैंक्विलिटी, अबंडेंस एंड ग्रेसफुल ब्यूटी ऑफ द ऑटम सीजन, एंड वेयर कवि नजरुल इस्लाम प्रेजेंट्स नेचर as a source of inner peace and spiritual

0: नजरुल गीति की इस सुंदर प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती तुली रेखा दत्त अब प्रस्तुत करेंगी बोऊ कथा कौ अभिमानिनी, जो कि प्रेम में आपसी बातचीत और मान मनोवल की बात करता है। इस गीत के माध्यम से कवि कहते हैं कि रिश्तों को संवारने के लिए अभिमान छोड़ आपसी समझबूझ और वार्तालाप की राह अपनानी चाहिए।
1: Continuing with her lovely rendition of Nozrul Giti, Srimati Tuli Rekha Datta now presents Bou Kotha Kau Obhimanini, a song that depicts the power of love, communication and reconciliation. It emphasizes that relationships flourish when pride gives way to understanding and heartfelt conversation.

0: श्रीमती तुलीरेखा दत्त नजरुल गीत के इस कार्यक्रम का समापन झूम झूम झूमरा के साथ करेंगी, जो संगीत, नृत्य और जीवन छंद के प्रति हमारे अनायास प्रेम का बखान करता है। ये गीत कहता है कि नृत्य हर्षोल्लास की एक सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है, जो लोगों को प्रकृति और ईश्वर से जोड़ता है।
1: Srimati Tuli Rekha Datta concludes her presentation of Nojrul Giti tonight with Jhum Jhum Jhumra Nache Ke Elo, which depicts our spontaneous love for music, dance and the joyful rhythm of life. It portrays dance as a universal expression of happiness that unites people with nature and the divine.

0: अभी आप बंगाल से प्रेम की भेंट स्वरूप नजरुल गीति सुन रहे थे। कलाकार थी श्रीमती तुली रेखा दत्तो। इसी के साथ नजरुल गीति की यह प्रस्तुति यहीं संपन्न होती है। कृपया अगली घोषणा हेतु हमारे साथ बनी रहें।
1: यू आर लिसनिंग टू अ बुके ऑफ नजरुल गीति कैरिंग लव फ्रॉम द लैंड ऑफ बंगाल एंड एज प्रेजेंटेड बाय श्रीमती तुली रेखा दत्ता. And with this, we end tonight's presentation of

0: Nojruliti, which was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata. Please stand by for the next announcement.
1: ये आकाशवाणी है। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं बिहार की समृद्ध लोक संगीत परंपरा की एक मनभावन प्रस्तुति। बिहार की लोक परंपरा में जीवन के सुख दुख, प्रेम और विरह, भक्ति, पारिवारिक संबंध तथा सामाजिक सरोकार, इन सभी भावों की सहज और आत्मीय अभिव्यक्ति लोकगीतों के माध्यम से होती रही है। आज की प्रस्तुति की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध लोक गायिका वंदना कुमारी। वंदना कुमारी आकाशवाणी की बी हाई ग्रेड कलाकार हैं। उन्होंने लोक गीत गायन की शिक्षा भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना से प्राप्त की। वहीं उन्होंने अपने गुरु मनोरंजन ओझा से लोक गायन की बारीकियों के साथ साथ लोक परंपराओं की गहन जानकारी प्राप्त की।
2: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू आवर रीजनल ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ फोक एंड लाइट म्यूजिक। टुडे वी ब्रिंग यू द रिच एंड कलरफुल फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ बिहार, अ ट्रेडिशन दैट हैज लिव्ड थ्रू जेनरेशंस एंड कंटिन्यूज टू कनेक्ट पीपल विद देयर roots. Bihar folk songs beautifully reflect the many shades of life, joy and sorrow, love and longing, devotion, family relationships and everyday social life. Our featured artist today is the well-known Bhojpuri folk singer, Vandana Kumari. Vandana Kumari is a B high grade artist of All India Radio. She received her training in folk singing at the Bharatiya Nritya Kala Mandir, Patna, where she learned the finer nuances of folk music and the traditions associated with it from her guru Manoranjan Ojha.
1: आज की प्रस्तुति की शुरुआत वंदना कुमारी कर रही हैं एक पारंपरिक देवी गीत से। देवी गीतों की बिहार की लोक परंपरा में अपनी विशिष्ट पहचान है। इसका एक लोकप्रिय रूप है पचरा, जिसमें देवी की महिमा, लोक विश्वास और भक्ति भावना का सुंदर समावेश दिखाई देता है। प्रस्तुत गीत में शीतला माता और मल्ला के बीच संवाद के माध्यम से भक्ति और लोक आस्था को अभिव्यक्ति दी गई है। तो आइए सुनते हैं वंदना कुमारी के स्वर में यह पारंपरिक देवी गीत, जिसके बोल हैं एही पार शीतला मैया।
2: आवर फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज अ ट्रेडिशनल देवी गीत और अ डिवोशनल सॉन्ग डेडिकेटेड टू द गॉडेस। देवी गीत ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस इन बिहार्स फोक ट्रेडिशन। वन ऑफ इट्स पॉपुलर फॉर्म इज नोन एज पचरा, which brings together devotion, folk belief and the glory of the goddess. In today's song, we hear a dialogue between Sheetala Mata and a boatman woven into a beautiful expression of faith and devotion. So, let us listen to Vandana Kumari in this traditional Devi Geet titled, Yehi Paar Sheetala Maiya.

0: अब प्रस्तुत है शिव भजन, जिसके बोल हैं एहो शिव शंकर दानी। इस भजन में भक्त भगवान शिव से मंगल की कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं। भारतीय लोक और धार्मिक संगीत परंपरा में मंगल कामना का विशेष महत्व रहा है। ईश्वर का स्मरण और मंगल की प्रार्थना इसी शुभ अवसर पर प्रस्तुति के आरंभ का अभिन्न हिस्सा रही है।
1: एंड नाउ अ शिव भजन। द सॉन्ग इज टाइटल्ड एहो शिव शंकर दानी। इट इज अ प्रेयर टू लॉर्ड शिवा सीकिंग हिज ब्लेसिंग एंड विशिंग for peace and well-being in our folk and devotional traditions. Remembering the divine and seeking blessings has always been an important part of any auspicious occasion. So let us listen.

0: अब अगली प्रस्तुति है झूमर। प्रस्तुत झूमर में नायिका अपने पति से विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मांग करती है। गीत में दाम्पत्य जीवन की आत्मीयता और सहज हास परिहास का सुंदर रंग दिखाई देता है। आइए सुनते हैं यह मनभावन झूमर, जिसके बोल हैं कुसुम रंग चुनरी।
1: Our next presentation is a lively jhumar. In this song, a woman playfully asks her husband for beautiful clothes and ornaments. It is a charming glimpse of married life, filling with affection, warmth and a touch of humor. Here is the jhumar titled Kusum Rang Chuneri.

0: अब प्रस्तुत होने वाले लोक भजन में भरत और कैकेयी के संवाद के माध्यम से भगवान श्री राम के वन गमन से जुड़ी परिस्थितियों का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। इस संवाद में परिवार के भीतर उत्पन्न भावनाओं, पीड़ा और घटनाक्रम को लोक गायन की सहज शैली में अभिव्यक्त किया गया है। सुनते हैं यह लोक भजन जिसके बोल हैं राम कहां माई।
1: आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज अ फोक डिवोशनल सॉन्ग बेस्ड ऑन एन इमोशनल डायलॉग बिटवीन रिकॉलिंग द सर्कमस्टांसेस सरेंडिंग लॉर्ड राम exile through this simply yet powerful folk form. The song brings alive the emotions within the family, the pain, the conflict and the sorrow of separation. Let us listen to this lok bhajan titled Ram Kahan Aayi.

0: बच्चे के जन्म के छठे दिन मनाया जाने वाला छठी संस्कार परिवार के लिए खुशी और उल्लास का अवसर होता है। प्रस्तुत गीत में ननद और परिवार की अन्य महिलाएं बच्चे की माँ से विभिन्न प्रकार के आभूषण और वस्त्रों की मांग करती है। अब सुनते हैं ये छठी गीत जिसके बोल हैं छठिया पूजेला ननदी।
1: वन सच ट्रेडिशन इज द छठी सेरेमनी ऑब्जर्व्ड ऑन द सिक्स्थ डे आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। इट इज अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन फॉर द entire family. In this song, the sister-in-law and the other women of the family playfully ask the new mother for a different kind of

0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका वंदना कुमारी का गायन। संगत कलाकारों में नाल पर अर्जुन कुमार चौधरी, हारमोनियम पर अभिषेक पाठक और बांसुरी पर मोहम्मद सलीम। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन आकाशवाणी पटना केंद्र में किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द रीजनल ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ फोक एंड लाइट म्यूजिक फीचरिंग द रिनाउंड भोजपुरी फोक सिंगर वंदना कुमारी। द कंपेनियन म्यूजिशियन Where, अर्जुन कुमार चौधरी ऑन नाल, अभिषेक पाठक ऑन हारमोनियम एंड मोहम्मद सलीम ऑन फ्लूट। द प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी पटना सेंटर।
2: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एअर ऍप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। यानंतर ठीक 11 वाजता दिल्ली केंद्रावरून हिंदीतून बातमीपत्र आणि त्यानंतर इंग्रजीतून बातमीपत्र प्रसारित होईल। आम्ही ते सहक्षेपित करीत आहोत।

0: 558 किलोहर्ट्जवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. आमची यानंतरची उद्घोषणा लगेचच. आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. 11:10 झाली आहेत. आता प्रसारित करीत आहोत जपान इथं आयोजित आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 दैनंदिन आढावा.
1: एशियन गेम्स 2026 आयची नगोया.
2: बीसवें एशियाई खेलों में आज के कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं हम. मैं हूं अनुपम पाठक. नमस्कार. सबसे पहले आज की सुर्खियां. नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन कुश्ती में इतिहास रचा, पाया रजत पदक. सेलिंग में फ्रांसिस मनु और प्रिंस नोबेल ने रजत पदक हासिल किया. कंपाउंड आर्चरी में गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक पर निशाना साधा. स्क्वैश में महिला और पुरुष टीम दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक. और हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया. पहलवानी के मैच पर आज भारतीय लिहाज से एक अनोखी उपलब्धि आई. सोनीपत हरियाणा के लाल ने कमाल कर दिया. 1962 के बाद पहली बार कोई भारतीय ग्रीको रोमन स्पर्धा के इवेंट में फाइनल में पहुंचा. खुलासा शाहिद आजमी से.
3: भारतीय पहलवान नितेश कुमार ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीतकर 64 साल का इंतजार खत्म कर दिया. शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल तक पहुंचे नितेश भले ही स्वर्ण पदक से चूक गए, लेकिन उनका रजत पदक भारत की कुश्ती के इतिहास में एक नया अध्याय लिख गया. पुरुषों के 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में नितेश ने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमान बर्दी अगामेदेव को 7-1 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में मंगोलिया के गंगखुयाग गनबातार को 9-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई. फाइनल में उन्हें जापान के यूरी नकाजातो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रजत पदक जीतकर नितेश ने इतिहास रच दिया. वह 1962 के बाद ग्रीको रोमन वर्ग में एशियन गेम्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पहलवान बने. हालांकि इससे पूर्व 2 और ग्रीको रोमन मैच खेले गए, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली. 60 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित को ईरान के अब्बासपुर रागानी के खिलाफ मुकाबला गंवाना पड़ा. वहीं 77 किलोग्राम में अमन ने शानदार शुरुआत करते हुए मंगोलिया के बोरगिल तोशिन बातार को 8-6 से हराया. हालांकि अगले मुकाबले में कतर के शाहीन बदागी मुफराद ने अमन को 9-0 से शिकस्त दी. इसके साथ ही भारत का ग्रीको रोमन कुश्ती अभियान 2 पदकों के साथ समाप्त हो गया. वहीं महिला वर्ग में आज एकमात्र वजन वर्ग में भारतीय पहलवान मानसी अहलावत 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई. मानसी का कांस्य पदक मुकाबले में मंगोलिया के अल्तजिन तोक्तोक से सामना हुआ. रोमांच से भरपूर इस मैच में मानसी ने आखिरी दम तक जोर लगाया, लेकिन 4-2 से हार कर कांस्य पदक से चूक गई. इससे पहले मानसी ने प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की इरीना कुज़नित्सोवा को 6-1 से हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की जो सुबिन को विक्ट्री बाई फॉल से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. हालांकि सेमीफाइनल में जापान की नोनोका ओजाकी के खिलाफ मानसी को 0-6 से हार का सामना करना पड़ा. अब कल 2 अक्टूबर को पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में सुजीत कलकल और 125 किलोग्राम में रुहाल चुनौती पेश करेंगे. वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम में दीपांशी और 76 किलोग्राम में प्रिया मलिक मैट पर उतरेंगी.
2: नौकायन के नाविक कई दिनों से समंदर की लहरें गिन रहे थे. आज कई स्पर्धाओं में उनकी नाव किनारे पर जा लगी. स्किफ में प्रिंस नोबेल और फ्रांसिस मनु की नाव तो चांदी से भर गई, और इस चांदी की पूरी कहानी साक्षी मंडवाल से.
4: इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल विनिंग सिल्वर इन द मेंस स्किफ इवेंट. द इंडियन पेयर फिनिश सेकंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 net points. India recorded 2 race wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China claimed the gold while Hong Kong took the bronze medal.
2: कंपाउंड आर्चरी में युवा होनहार गणेश रत्नम और चिकिता तानीपार्थी थे आर्चरी रेंज में. पदक एक ही आया. रिपोर्ट शाहिद आजमी से.
3: एशियन गेम्स के 12वें दिन तीरंदाजी में भारत के लिए एक पदक आया, तो एक मुकाबले में करीबी हार का सामना करना पड़ा. पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने कांस्य पदक अपने नाम किया. कांस्य पदक के मुकाबले में गणेश ने वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149 के मुकाबले 144 अंकों से हराया. गणेश ने मुकाबले में गजब की सटीकता दिखाई और 15 में से 14 तीरों पर परफेक्ट 10 का स्कोर किया. यह एशियन गेम्स में गणेश का दूसरा पदक है. इससे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम का हिस्सा रहे थे. उनके कांस्य पदक के साथ कंपाउंड तीरंदाजी में भारत ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य समेत 4 पदक जीते. वहीं महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में चिकिता तानीपार्थी को इंडोनेशिया की नुरिसा दिया.

0: अशफ़री खान ने बेहद करीबी मुकाबले में 144 से 143 हराया। इसके साथ ही चिकित्सा का व्यक्तिगत कंपाउंड अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया।
1: स्क्वाश में टीम स्पर्धाओं में भारतीय टीमें शानदार प्रदर्शन करती हुई सेमीफाइनल तक पहुंच गईं और आज सेमीफाइनल में दोनों टीमों के रैकेट विपक्षी कौशल और दमखम को पार नहीं कर सके, लेकिन उनके हौसले और अभियान की दाद दीजिए जिसने दोनों को दिलाए कांस्य पदक। रिपोर्ट धर्मेंद्र से।
2: स्क्वाश में भारत को आज दो कांस्य पदक मिले। पुरुष टीम को मलेशिया के हाथों सेमीफाइनल में 1-2 की हार से ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। पहले मैच में अभय सिंह को एनजी इयान ने 0-3 से शिकस्त दी। स्कोर 8-11, 8-11, 8-11 रहा, लेकिन दूसरे मैच में वीर चोटरानी ने भारत को वापसी कराई। इस मैच को चोटरानी ने 3-0 से अपने नाम किया। उन्होंने मलेशिया के खिलाड़ी संजय जीवा को 11-4, 11-8, 11-5 के स्कोर से शिकस्त दी, लेकिन वी सेंथिल कुमार निर्णायक मैच में पराजित हो गए। उन्हें ए चंद्रन ने 4 सेट में 12-10, 6-11, 8-11, 9-11 से हराया और भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। भारतीय महिला स्क्वाश टीम को भी ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। टीम को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत भारतीय महिला स्क्वाश टीम के लिए अच्छी नहीं रही। ये अलग बात है कि अनाहत सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ अच्छी शुरुआत की और पहले दो गेम जीते। अनाहत ने पहला गेम 11-9 और दूसरा गेम 11-8 से अपने नाम किया। हालांकि इसके बाद चान सिन ने शानदार वापसी की और उन्होंने अगले 3 गेम जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया। तीसरा गेम चान सिन ने 11-6 से जीता तो चौथे गेम को 13-11 और पांचवें गेम को 12-10 से जीता। इस जीत के साथ हांगकांग ने मैच में 1-0 की बढ़त बना ली। हालांकि इसके बाद तन्वी खन्ना ने भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। उन्होंने अपने से ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ी ली का यी को बेहतरीन वापसी करते हुए हराया। पहले गेम में तन्वी को 4-11 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने अगले 3 गेम जीतकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। तन्वी ने दूसरा गेम 13-11, तीसरा गेम 11-9 और फिर 13-11 से जीता। निर्णायक मुकाबले में जोशना चिनप्पा ने निराश किया और वह होजे लोक के खिलाफ हार गयी। होजे ने पहला गेम 11-4 से अपना नाम किया। इसके बाद दूसरे गेम में भी हांगकांग की खिलाड़ी का दबदबा रहा और उन्होंने गेम को 11-7 से जीता। होजे तीसरे गेम में भी हावी नजर आई और उन्होंने 11-9 से जीतकर हांगकांग को फाइनल का टिकट दिलाया।
1: हॉकी में परंपरागत विपक्षी भारत और पाकिस्तान थे आमने सामने और क्या मैच हुआ, लोमहर्षक, सांसें थाम देने वाला। भारत ने करीब 1 दशक से पाकिस्तान पर चली आ रही अपनी बादशाहत बनाए रखी, मैच 4-3 से जीत लिया। किसी बेहतरीन थ्रिलर की तरह था ये मैच। 3-3 की बराबरी, खेल समाप्त होने वाला था, सीटी बजने वाली थी, लग रहा था मामला शूट आउट में जा रहा है। तो हूटर बजने के ठीक 40 सेकंड पहले भारतीय हमला होता है, गेंद डी में पहुंचती है, पाकिस्तानी डिफेंडर के स्टिक से टकराकर फ्लेक्ट होती है और अभिषेक ने फुर्ती के साथ गेंद को गोल मुहाने के भीतर कर दिया। भारत फाइनल में पहुंच गया, लेकिन इस मैच के रंग कई बार बदले थे। पहले दोनों क्वार्टर्स भारत के नाम और अगले दोनों में भारतीय रक्षण की चूक और पाकिस्तान के पलटवार। पहले क्वार्टर में ही 5वें मिनट और फिर 13वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर हिट्स का जादू चलाया, भारत 2-0 से आगे। हाफ टाइम के बाद सुखबीर ने एक बेहतरीन फील्ड गोल कर भारत को 3-0 से आगे कर दिया। भला किसने सोचा था कि पाकिस्तान अभी भी मैच में वापस आ सकता है, लेकिन लगा भारतीय रक्षण की धार अचानक कुंद सी हो गई है। पहले पेनल्टी कॉर्नर में अल महमूद और फिर हनान शाहिद का फील्ड गोल और उसके बाद चौथे क्वार्टर में राणा वहीद का भी लेफ्ट फ्लैंक से मारा गया करारा शॉट जिससे गोलकीपर कोसों दूर थे। बहरहाल अभिषेक के गोल ने भारत की जीत पक्की कर दी। अब स्वर्ण पदक के लिए भारत मलेशिया से भिड़ेगा 3 तारीख को और कहने की जरूरत नहीं, हॉकी का स्वर्ण पदक और सभी पदकों से ज्यादा प्यारा होता है हमें। क्रिकेट में आखिरकार भारतीय टीम सचमुच मैदान में उतरी और शानदार मैच खेला। इस शानदार जीत की शानदार कहानी धर्मेंद्र से।
2: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर एशियन गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने जापान के निशिन में खेले गए सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों पर 38 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के 6 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट भारत के लिए लिए। भारत ने श्रीलंका पर 2020 क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया। पिछली सबसे बड़ी जीत 93 रन की थी जो 2017 में कटक में मिली थी। अब शनिवार को गोल्ड के लिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये पहला मौका है जब ये दोनों टीमें एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले में आमने सामने होंगी। ईशान ने बताया कि भारतीय टीम फाइनल मैच के लिए तैयार है। ईशान किशन ने इस मैच के बारे में कहा,
3: आई थिंक जस्ट कीपिंग इट सिंपल, यू नो, यू डोंट थिंक सो मच। वी प्लेड टुडे, वी नो द कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू बी सो इजी, स्पेशली दे आर आल्सो स्पिनिंग स्पिनर फ्रेंडली टीम। एट द सेम टाइम, यू नो, यू जस्ट डोंट थिंक लाइक व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर टू डेज, यू जस्ट कीप काम, यू प्ले योर शॉट्स, यू बी इन द मोमेंट एंड जस्ट एंजॉय दोस क्रंच मोमेंट्स।
1: सिपेक टॉकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में अरुण और बॉबी कुमार के खेल ने उम्मीदें जगाई रखी। जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
4: इंडिया सिक्योर्ड अ मेडल इन मेंस क्वाड्रेंट सिपेक टॉकरा आफ्टर बीटिंग म्यांमार 2-1 इन देयर फाइनल ग्रुप मैच। द विक्ट्री सेंट इंडिया इनटू द सेमीफाइनल्स एंड कीप्स देयर अनबीटन रन इंटैक्ट अक्रॉस 3 ग्रुप मैचेस। इंडिया फिनिश्ड टॉप ऑफ देयर ग्रुप एंड आर अश्योर्ड ऑफ अ प्लेस ऑन द पोडियम। अर्लियर इन द डे वी सॉ इंडिया डिफीट वियतनाम इन द मेंस क्वाड्रेंट ग्रुप ए मैच ऑफ द सिपेक टॉकरा इवेंट। दे वन in straight sets by a margin of 15-12, 15-7, thereby defeating Vietnam 2-0.
1: शूटिंग की स्पर्धाएं आज समाप्त हो गई। अंतिम स्पर्धा भी कल से जारी पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश भानवाला फाइनल तक तो पहुंचे, लेकिन पदक पे निशाना नहीं साध पाए। आज की स्पर्धा पर शाहिद आजमी का विवरण।
0: एशियन गेम 2026 में शूटिंग स्पर्धा में आज भारत की आखिरी उम्मीद अनीश भानवाला का सफर 25 मीटर रैपिड पिस्टल के फाइनल में 7वें स्थान पर रहते हुए खत्म हुआ। क्वालिफिकेशन में अनीश ने 576 का स्कोर कर नवां स्थान हासिल किया। हालांकि एक देश से अधिकतम 2 निशानेबाजों फाइनल में पहुंचने के नियम के तहत उन्हें फाइनल में जगह मिली। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया के 3 निशानेबाज क्वालिफाई हुए थे, लेकिन नियम के तहत उनके 2 निशानेबाज ही फाइनल में पहुंच सके। फाइनल में अनीश ने एक अहम दौर में 15 में से 11 सटीक निशाने लगाए, लेकिन टाई ब्रेकर में पीछे रह गए। इस तरह अनीश 7वें स्थान पर रहे और उनके साथ ही एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग अभियान समाप्त हो गया। अब एक नजर डालते हैं एशियन गेम 2026 में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर। भारतीय शूटरों ने एक बार फिर अपनी सटीक निशानेबाजी का दम दिखाया। हालांकि कुछ नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। ओवरऑल भारत ने कुल 15 पदक अपने नाम किए, जिनमें 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही नीरू ढांडा का प्रदर्शन। उन्होंने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने के साथ ही कायनन चेनाई के साथ मिक्स ट्रैप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। और अगर पिछले एशियन गेम्स की तुलना करें तो हांगझाऊ 2022 एशियन गेम्स जो 2023 चीन में आयोजित हुए थे, वहां भारतीय निशानेबाजों ने 22 पदक जीते थे, जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।
1: वॉलीबॉल में टीम दमखम तो पूरा लगाती है, लेकिन 1986 के बाद से पदक नहीं आ पा रहा। लेकिन आज क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को वो ब्लॉक नहीं कर पाए। विवरण धर्मेंद्र से।
2: वॉलीबॉल में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से 0-3 से हार गई। पाकिस्तान ने मुकाबला 25-19, 25-23, 25-18 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ये मैच 1 घंटे 20 मिनट तक चला। भारत को सबसे ज्यादा 10 अंक अंशवाल राय ने दिलाए। पाकिस्तान के मुराद खान ने 22 अंक बनाए। इस हार के साथ भारत का एशियन गेम्स में वॉलीबॉल अभियान खत्म हो गया।
1: जूडो में उम्मीदें यामिनी मौर्य से थीं, लेकिन मन मोह लिया मणिपुर की एक लड़की ने। कांस्य पदक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। जूडो का विवरण साक्षी मंडवाल से।
4: इन जूडो यामिनी मौर्या'स कैंपेन एंडेड विद अ डिफीट इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम रेपोचार्ज एट द एशियन गेम्स। व्हाइल इंडियाज इनन गनबी तकलम्बाम फर्स्ट बीट नेपाल्स पूनम श्रेष्ठा बाय इपो टू क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। हाउएवर शी लॉस्ट बाय इपो टू नॉर्थ कोरिया'स सॉन्ग हुई मून इन द क्वार्टर फाइनल्स। सॉन्ग्स रीचिंग The final opened up the repechage route for Taklambaam. The Indian was scheduled to face China's Jing Tang in the repechage round. However, the Chinese judoka was disqualified before the bout. Consequently, Taklambaam was awarded a walkover victory by a Fusen Gachi. India's Inan Gambi Taklambaam lost the bronze medal bout in the women's 70 kg event, getting defeated by Anujin Ulzi, who won the bout by Waza Ari.
1: इन एशियाई खेलों में टेनिस ने जरूर कई दिल तोड़ दिए, मायूस किया। 40 साल बाद टेनिस में भारतीय दल बिना पदक के रह गया। सुमित नांगल भी अपना मैच आज हार बैठे क्वार्टर फाइनल का। लेकिन गोल्फ की बात करें तो उसमें उम्मीदें जगी हुई हैं। कल आरंभ हुआ था, भारतीय टीम चुनौती देने की स्थिति में लग रही थी, और आज क्या हुआ इसका विवरण दे रही हैं साक्षी मंडवाल।
4: इंडियाज प्रणवी उर्स वॉज इन द सेकंड प्लेस इन द वुमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले आफ्टर टू राउंड्स कार्डिंग 11 अंडर 129 टू सेट टू स्ट्रोक्स।

0: Behind leader Shannon Ruan Jin Tan of Singapore. Diksha Dagar was tied 21st at 4 over 144, while Aditi Ashok was tied 25th at 5 over 145. India are third in the team standings behind China and Singapore.
1: साइकिलिंग ट्रैक में आज पुरुष ओमनियम, महिला स्प्रिंट और मेडिसिन की प्रतियोगिताएं थीं। ओमनियम में हर्षवीर सिंह सैखों नवे स्थान पर पहुंचे। महिलाएं मेडिसिन स्पर्धा समाप्त ही नहीं कर सकी और स्प्रिंट में साइकिलों के चक्के रिपेचेस तक पहुंचकर ही थम गए। तो ताइक्वांडो में क्या हुआ, आइए जानते हैं साक्षी मंडवाल से एक बार फिर।
0: इंडिया कैंपेन इन द वुमेन्स इंडिविजुअल पॉम्से इवेंट इन ताइक्वांडो एंडेड एज रूपा बेयर बाउड आउट ऑफ द सेमीफाइनल। शी फिनिश्ड विद 7.6100 पॉइंट्स। दिस वाज नॉट इनफ टू फिनिश अमंग द 8 स्टार्स हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल।
1: रग्बी सेवन के मुकाबलों में भारत पूल ई में है। हांगकांग से पहला मैच ही बहुत मुश्किल साबित हुआ भारत के लिए। इस स्पर्धा का पूरा विवरण साक्षी मंडवाल से।
0: इंडियाज वुमेन्स रग्बी सेवन्स टीम कंप्राइजिंग शिखा यादव, दुमुनी मारंदी, संध्या राय, मामा नाय, वैष्णवी पाटिल, कल्याणी पाटिल, अमनदीप कौर, आरती कुमारी, भूमिका शुक्ला, गुरिया कुमारी, निर्मल्या राउत, संध्या रानी टुडू एंड उज्ज्वला घुगे हैड अ टफ स्टार्ट ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द आईची नगोया 26 Asian Games, suffering two heavy defeats in Pool B, Pool E in some classifications at the Paloma Mizuho Rugby Stadium. In match number 1, India was handed a defeat by Hong Kong China 33-7, while in match number 2, India was handed a defeat by People's Republic of China 43-5.
1: और अब पदक तालिका की ताजा स्थिति शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारत के खाते में अब तक 10 स्वर्ण, 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदक हैं और भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। वहीं मेडल टेबल पर चीन 154 स्वर्ण समेत 288 पदकों के साथ पहले, जापान 59 स्वर्ण समेत 217 पदकों के साथ दूसरे और दक्षिण कोरिया 30 स्वर्ण समेत 113 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
1: ये एशियाई खेल अपने समापन की ओर बढ़ चले हैं। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अभी भी पदकों के लिए पूरी रस्साकशी जारी है। वो सवाल जो प्रतियोगिताएं उठाती हैं, जिनके जवाब होते हैं स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक पाना, उसके लिए जद्दोजहद जारी है और भारतीय खिलाड़ी भी इसमें लगे हुए हैं। कल का दिन बहुत खास रहने वाला है क्योंकि महिला हॉकी का फाइनल है। सारी निगाहें वहीं रहेंगी। भारत की लड़कियां चीन के विरुद्ध उतरेंगी हॉकी के मैदान पर। बहुत शानदार मैच रहेगा ये। इसके बारे में जानना हो तो हमारी अपडेट्स आकाशवाणी पे हमारे साथ रखिएगा। भारतीय लड़कियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार खेला है। सबसे पहले उज्बेकिस्तान को 19-0 से परास्त किया, उसके बाद इंडोनेशिया को 17-1 से, थाईलैंड को 20-1 से, जापान को 3-1 से, सिंगापुर को 7-0 से और सेमीफाइनल में कोरिया की मजबूत टीम को 2-0 से परास्त किया था। यानी पूरे जोश में होंगी लड़कियां और स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में आना चाहिए। कल और 3 स्वर्ण पदक हैं जिन पर भारतीय निगाहें रहेंगी। बॉक्सिंग के रिंग में उतरेंगे अंकुश पंघाल, परवीन हुड्डा और लवलीना बोरगोहेन। देखते हैं बॉक्सर्स भारत के लिए क्या करके दिखाते हैं। वैसे बॉक्सर्स ने अब तक के इन एशियाई खेलों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, पहले से कहीं बेहतर। अगर प्रदर्शन ऊंचा हुआ है तो बॉक्सिंग वो स्पर्धा है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा करके दिखाया है। कुश्ती में भी कल भारतीय पहलवान बहुत कुछ कर गुजरने की चाह लेकर मैट पर उतरेंगे। फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल होंगे 65 किलोग्राम भार वर्ग में, रजत होंगे 125 किलोग्राम भार वर्ग में, दीपांशी 50 किलोग्राम भार वर्ग में और प्रिया 76 किलोग्राम भार वर्ग में अपने दांव पेंच दिखाएंगे। तो आर्चरी में रिकर्व टीम की सेमीफाइनल स्पर्धाएं हैं। अंकिता भगत, कीर्ति और कुमकुम खेलेंगी चीन के विरुद्ध। इसके अलावा केनो स्लालोम में महिला और पुरुष के क्रॉस इंडिविजुअल हैं। साइकिलिंग में महिला ओमनियम, पुरुष काइरिन और पुरुष मेडिसन की प्रतियोगिता होगी। गोल्फ में पुरुष टीम राउंड 3 में खेलेगी और इसके अलावा इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले महिला और पुरुष का जारी रहेगा। रग्बी सेवन में मलेशिया के विरुद्ध मैच होगा। सेपक टॉकरा में महिला क्वाड्रेंट के मुकाबले होंगे। ताइक्वांडो में कशिश मलिक उतरेंगी। और अब समय आ पहुंचा है विदा लेने का। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, कल सुबह 9:30 बजे से FM रेनबो पर नियमित अपडेट्स सुनना मत भूलिएगा और रात 10 बजे हमारा ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो फिलहाल मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।